जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से बोल रहे हैं। विक्रम के

साथियों के संबंध में दखल किया है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित

आसमान स्थान है। जन्म कारण से ये है कि जो जरूरी है उसे ले, उसे ले और उसके अनुसार जीने की कोशिश करें। ये था अच्छा चिंतन और अब भक्ति संगीत।

Por favor,

पर आज आपके लिए कार्यक्रम हम हैं रानी चैटर्जी। सुबह 8 बजे समाचार प्रभात और इसी के तुरंत बाद 8:55 पर सुनिए त्रिवेणी कार्यक्रम, आलेख और स्वर मंजरी वर्मा का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। यह कार्यक्रम दिन में 2 बजे समय सुना जा सकता है। पिछले कार्यक्रम का समय होगा सुबह 8:20 आनंदी का। आज के संचार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता भारत भूषण पर। कार्यक्रम का समय होगा सुबह 9:30 और इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा रात 9:30 पर। प्रस्तुत करता रमेश गोखले। बॉम्बे टॉकीज में आज आप सुनेंगे कोरियोग्राफर टेरेंस लिन से अमरकांत दुबे की बातचीत का भाग 2 सुबह 10 बजे।

0: un human face.
1: Coming to that Facebook website, you can see that the person may be a person who may go with children from a third of a half an inch. So, what I have now only asked them to go with the may go with children from a third of a month ahead. It's kind of a summer hoga, go for half in the day. तीन बजकर तीस मिनट पर सुनिए नाट्य तरंग में नाटक अभिषेक गांधार का भाग दो, लेखक डॉक्टर शंकर के, निर्देशक सुदर्शन कुमार। उजाली उनकी यादों की विचार के अंतर्गत सुनिए ये कार्यक्रम दिन में चार बजे। कवि प्रदीप की सुपुत्री एवं चित्रकार मिथुन प्रदीप से मल्लाकुंड जोशी की बातचीत आधार के हम आपको सुनवाएंगे। शायद इस कार्यक्रम का समय होगा शाम पाँच बजे, पाँच बजकर तीस मिनट पर तारानी नए पुराने, शाम छह बजे सुनिए हिंदी में समाचार और शाम छह बजकर तीस मिनट पर सुनिए झरोखा के अंतर्गत आज के शेष और कल दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का लेखा जोखा।

प्रोग्राम में आपको पहले भी बताया, विशेष जयमाला आज आप सुनेंगे सैनिकों की शौर्य गाथा। महावीर चक्र दीवान रंजीत राय, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रस्तुति तेजी कामली की।

फोन पर ताजा फिल्म नाटिका का आगे सीखने वाले लेखन अभिलाष का निर्देशन पुरुषोत्तम दारविकर का रात्रि के चित्रण कार्यक्रम का समय होगा 8:15 8:45 पर समाचार संध्या रात्रि 9 बजे सुनेंगे आप कार्यक्रम आपके लिए

ये थी जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। और अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस का भाग 219।

तथा गुरुजनों की सभा में भरत विविध प्रकार से श्री राम के प्रति अपनी भक्ति और निष्ठा प्रकट करते हैं। प्रेम के प्रण को निभाते हुए पिता की मृत्यु, माता कैकेयी की कुबुद्धि, अन्य माताओं की विकलता तथा अवध निवासियों के परिताप, इन सभी अनर्थों के मूल में भरत स्वयं को पाते हैं। तब मुनि वशिष्ठ ने अनेक कथाएं सुनाते हुए भरत जी के परिताप का समाधान किया। प्रभु श्री राम ने कहा,

सभी पुण्यात्माओं से तुम्हारा स्थान ऊंचा है। शिव जी साक्षी हैं कि ये पृथ्वी तुम जैसे पुण्यात्माओं के बल पर टिकी है। प्रेम और वैर छिपाए नहीं सकते। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। वे मुनियों के पास निशंक चले जाते हैं, किंतु बदिकों को देखते ही भाग खड़े होते हैं।

0: the rest of my spirit. Thanks for prayer and God's advice, don't try to outside it. It's from Turkey. How do you say? Saragari, Dr. Prakash Mahadev.
1: Sarangi, सुमधुर और समृद्ध काव्य है। यह एक ऐसा वाद्य है जो लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों में ही प्रचलित है। पहले हम लोक संगीत में प्रचलित सारंगियों पर विचार करेंगे। भारत के लोक वाद्यों में सारंगी परिवार के वाद्य हैं सारंग, राजस्थान का सारिंगा, कमायचा, मध्य प्रदेश का चिकारा, बिहार का बनाम आदि विशेष गज वाद्य है। भारतीय लोक संगीत में गज से बजाई जाने वाली सिंधी सारंगी, जोगिया सारंगी, धामी सारंगी, गुजरातन सारंगी और अलाबी सारंगी प्रचलित होने की जानकारी मिलती है। सिंधी सारंगी सिंध प्रदेश में प्रचलित रही। वैसे लंगा जाति के लोग इसका वादन करते हैं। नाम से गुजरातन सारंगी भले ही गुजरात का लोक वाद्य प्रतीत होता हो, किंतु इसे राजस्थान के लंगा जाति के गायक अपने साथ संगत हेतु अधिक उपयोग में लाते हैं। जोगिया सारंगी संज्ञा इसलिए दी कि जोगियों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता रहा। अलाबी सारंगी का प्रयोग विशेषकर जैसलमेर क्षेत्र में अधिक होता है। मंजुलिया जाति के लोग अलाबी सारंगी बजाते हैं। इन सभी सारंगियों में सामान्यतः मुख्य दो लोहे के तार, दो सांप के तार और 9, 11 अथवा 17 तरबे लगाई जाती हैं। भारत की लोक परंपराओं में प्रचलित सिंधी, जोगिया, अलाबू, धामी और गुजरातन सारंगी के आकार, प्रकार, बनावट और तारों की संख्या में और इन्हें मिलाने की पद्धति में बहुत कुछ समानता दिखाई देती है। ये सभी सारंगियां गज से बजाई जाती है। विशेष अंचल में तथा विशेष जाति के लोगों द्वारा इसे प्रयुक्त किए जाने के कारण सारंगी के साथ इसका नाम जुड़ गया। सारंगी विशेषकर उत्तर भारत के राजस्थान, गुजरात, कश्मीर आदि भागों में प्रचलित है। सामान्यतः ये लोकगीतों के साथ संगत हेतु उपयोग में लाई जाती है। इसे खड़े रहकर और बैठकर दोनों ही प्रकार से बजाया जाता है। कुछ लोग इसे विदेशी वाद्य बताते हैं, किंतु विभिन्न सारंगियों के वर्णन से यह स्पष्ट है कि सारंगी यह पूर्णतः भारतीय वाद्य है और न केवल शास्त्रीय संगीत में बल्कि लोक संगीत में भी इसकी जड़ें गहरी जमी हुई है। शास्त्रीय संगीत के पुरातन पद्धति के एक कलाकार हुए उस्ताद डुंडू खां। तो आइए हम इन्हीं का रिकॉर्ड किया हुआ राग भैरवी सुनते हैं। यह रिकॉर्ड सन 1948 में किया गया।

परिवर्तन होते रहा है। अभी हमने उस्ताद बिंदू खां का सारंगी वादन सुना, अब हम उस्ताद सुल्तान खां का सारंगी वादन सुनते हैं, राग है देश। इसे सुनकर पुराने और नए सारंगी के टोन का अंतर समझ

उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि आज हिंदी डिस्ट्रीब्यूट एक कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के अमर अभिनेता और गायककार भरत भूषण को। उनके जन्मदिन के अवसर पर आज हम सुन रहे हैं कि कुछ सदाबहार गीत जो आज भी जीवन में वही मिठास और अपनापन लगाते हैं। लीजिए अब आपको सुनाते हैं ये अगला गीत। बरसात के साथ इस फिल्म से है इसके बोल देते हैं रोशन का संगीत है और इस गीत को स्वर दिए हैं आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा, शंकर शंभू और साक्ष।

संगीत प्रधान फिल्मों में उनकी उपस्थिति इतनी प्रभाव फैल रही कि उनका नाम सुनते ही मधुर गीतों की पूरी दुनिया याद आ जाती है। आइए अब आपको सुनाते हैं जो अगला गीत, फिल्म का नाम है बसंत बहार। महानगृति की आवाज है रचना शैलेंद्र की, संगीत के बजाय है शंकर जयकिशन ने।

0: de que se debe dejar de
1: participar.
0: Recording que no se dice a Hamara Telephone Number 022-400-2462. तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
2: आवाज़ में बिस्तरी अपनी आवाज़ में सुनते हैं राजपूत प्रेम कहेगी और इंसानी में इसके बोलने से है और हम प्राप्त होंगे

0: अपने पिता कभी कभी के जीवन से जुड़ी कुछ यादें,
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आगे
0: सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशन को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।

magari fare Psalm 5 di tutti i luoghi.

0: साथ ऐसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया, वो भी गारंटी के 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन

विषय पर आधारित है। दोस्तों, सांस दिन और रात के मधुर मिलन का वो क्षण है जहाँ प्रकृति अपनी समस्त थकान उतार कर एक शांत गंभीर और सौम्य रूप धारण कर लेती है। जब सूर्य अपनी सुनहरी किरणों को समेटते हुए क्षितिज की गोद में विश्राम लेने लगता है तब आकाश के विस्तार पर लालिमाओं, केसरिया और धूसर रंगों की छटा बिछड़ जाती है। ये दृश्य केवल आंखों को ही नहीं मन को भी एक अद्भुत शांति से भर देते हैं। सांस का समय जीवन के उस पड़ाव का प्रतीक है जहाँ गति की तीव्रता मन को पर आत्मचिंतन में परिवर्तित हो जाती है।

0: संघर्ष और कोलाहल के पश्चात ये सांस की घड़ी ठहर कर स्वयं से मिलने का अवसर प्रदान करती है। पक्षियों का अपने घोंसलों की ओर लौटना, गायों का बच्चों के पास आना रंभाना, मंदिरों की घंटियों का मधुर मीनाद और आकाश में उभरती प्रथम तारा रश्मि, ये सभी दृश्य सांस को एक आध्यात्मिक गरिमा प्रदान करते हैं। साथ ही संस्कृति में सांस का विशेष महत्व रहा है। इसे संध्या वंदन का समय माना गया है। जब मनुष्य अपने दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर ईश्वर का स्मरण करता है, ये समय आत्मा की शुद्धि और मन की एकाग्रता का प्रतीक है।
1: कहूं

एक नए आरंभ की संभावना छिपी होती है। जैसे दिन का अवसान राष्ट्र का द्वार खोलता है, वैसे ही जीवन में प्रत्येक संधि एक नई दिशा का संकेत देती है। साहित्य और काव्य में भी सांस को विरह, प्रतीक्षा और स्मृति का भावपूर्ण रूप मिला है। प्रिय के वियोग में डूबी नायिका के लिए सांस का धड़का उसके मन की व्याकुलता को और गहरा कर देता है। वही किसी साधक के लिए यही सांस और ध्यान और समाधि का पावन क्षण बन जाती है। सांस केवल दिन का एक भाग नहीं बल्कि जीवन दर्शन का एक सजीव प्रतीक है, जो हमें संतुलन, शांति और आत्म अवलोकन का संदेश देती है।

क्योंकि किसी भी देशों में उनका जाना होता है तो सबसे पहली प्राथमिकता उनकी देश होती है। तो अभी भी जा रहे हैं तो जैसे पहले भी गए हैं तो देश के लिए बात करके देश को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लेकर आए हैं, तो आने वाले समय में भी देश के लिए भी वो और जो वैश्विक परिस्थितियां बनी है वो कैसे

20 से 50 छात्र केंद्र है। अगले कार्यक्रम की आयोजन है विविध भारती की।

अभिनेता हरि भूषण दास जन्मदिन है, तो आज के संचार कार्यक्रम हमारा जो आज सुबह 9:30 बजे का कार्यक्रम का वो केंद्रित होगा अभिनेता हरि भूषण पर। सुनते रहिए विविध भारती और ये जब आपको सुनाते हैं विशाल विद्वानी की आवाज में उन्हीं का लिखा भी संगीत है विशाल शेखर का। फिल्म का नाम बैंड बैंड

जिन्हें दिवस हमें याद दिलाता है कि प्रेम छोटी सी सहायता किसी के लिए जीवन बन सकती है। तो रक्तदान केवल दान नहीं बल्कि मानवता का सबसे बड़ा उपहार है। आज जरूरत है कि हम जल और धन से ऊपर उठकर नियमित रूप से रक्तदान करें। आपका एक यूनिट रक्त किसी अनजान व्यक्ति को नया जीवन दे सकता है। आइए इस दिन संकल्प में रक्तदान करें, जीवन बचाए। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें जीवन बचाए है। ये दिन नोबेल पुरस्कार विजेता

लोकगीत उभरे घोषित की थी। इसे पहली बार विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 2004 में स्थापित किया और मनाया गया था। आइए अब चित्रलोक कार्यक्रम का ये अंतिम गीत सुनते हैं फिल्म भूल भुलैया 3 से। आदित्य रखारी और तुलसी कुमार की आवाज है। गीत और संगीत आदित्य रखारी का।

कवन में आजा इससे कुछ बनाते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे तो जरूर मुझसे पूछ जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से

के लिए आपके मन की बात भी जोड़नी चाहिए। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

जमाना जब फिल्में तो ब्लैक एंड व्हाइट होती थी मगर उनकी कहानियां जीवन के जज्बाती रंगों से भरपूर। और याद आता है वो कलाकार जो अपने सुदर्शन व्यक्तित्व और सीधे सरल परंतु प्रभावी अभिनय से दर्शकों के दिलों पर

14 तारीख को मेरठ में जन्म हुआ भारतभूषण का। पिता राय बहादुर मोतीलाल सरकारी वकील थे। भारतभूषण बस दो ही वर्ष के थे जब उनकी माता का देहावसान हुआ। माँ के गुजरने के बाद बड़े भाई आर चंद्रा के साथ भारतभूषण अपने दादाजी के यहाँ

हर भूषण पिता की मर्जी के खिलाफ एक्टिंग में करियर बनाने के लिए पहले कोलकाता और बाद में मुंबई आकर बस गए। किदार शर्मा निर्देशित 1941 की फिल्म चित्रलेखा में भारत भूषण को अभिनय का पहला अवसर मिला। भारत भूषण को अभिनय का पहला अवसर तो मिला, मगर उसके बाद संघर्ष का एक लंबा दौर शुरू।

1952 में भारत भूषण को फिल्म मिली बैजू बावरा। इस फिल्म ने उन्हें आनंद फानंद सुप्रसिद्ध फिल्म सितारों की श्रेणी में लाकर रख दिया। इस फिल्म के संगीतकार नौशाद, नायिका मीना कुमारी और पार्श्व गायक मोहम्मद रफी को जितनी तारीफें मिली उतनी ही तारीफ

सिलसिला चल पड़ा। एक के बाद एक फिल्में आती गई। भारत भूषण अपने अभिनय से किरदार सजाते गए और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए। 1952 से 1954 तक रिलीज हुई ये फिल्में हैं आनंद मठ, माँ, मिर्जा खालिद, जवाब और श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु इस फिल्म के लिए भारत भूषण को सर्वोत्कृष्ट अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार प्रदान किया गया। उनके समकालीन अभिनेता और निर्माता चंद्रशेखर कहा करते थे, हिंदी फिल्मों में यदि पौराणिक या ऐतिहासिक पात्र कोई सबसे अच्छा निभाते हैं तो वो है अभिनेता

उनका बहुत शौक था। विभिन्न विषयों की किताबें वो पढ़ते रहते थे और शायद यही वजह थी कि वो बहुत अच्छे लेखक भी थे। बरसात की रात, नई उम्र की नई फसल, बसंत बहार और दूर का चांद आदि फिल्मों की कहानियां उन्हीं की लिखी हुई थी।

देखी रानी रूपमती चंपाकली गेटवे ऑफ इंडिया फागुन सम्राट चंद्रगुप्त सोहनी महिवाल सावन अंगुलीमाल बरसात की रात मुड़मुड़ के नवेश घूंघट संगीत सम्राट तानसेन 11,000 लड़कियां जहां आराम तकदीर 1950 और 1960 के दशक की इन फिल्मों में नायक की भूमिका निभाने वाले भारत भूषण उन गिने चुने अभिनेताओं में से थे जिन्हें संगीत की बहुत अच्छी समझ थी और इसीलिए अधिकतर संगीत प्रधान फिल्मों के नायक के रूप में उनका चुनाव किया जाता। जूझ का चांद इस फिल्म के वो निर्माता भी थे। उस जमाने के मशहूर गायक कलाकार मोहम्मद रफी मन्ना डे मुकेश और सनत महमूद के गाए ज्यादातर गीत भारत भूषण पर फिल्माए गए।

चरित्र अभिनेता के रूप में भारत भूषण पूरे उत्साह और उमंग के साथ सक्रिय थे। 1970, 1980 और 90 के दशक की ये फिल्में थीं जय संतोष सिम्हा, मीरा, उमराव जान, हीरो, रहगुजर, काला धंधा, गोरे लोग,

सुने का भारत भूषण पर केंद्रित ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रविश गोखले। अब दीजिए इजाजत जयंत पाद्रीकर को।

एक दशमलव आठ के हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी संकेतों का विविध भारती केंद्र है। कार्यक्रम सुगम संगीत लेकर आते होंगे पर

0: Señor. A ti, Dios, que gran Dios que pan.
1: No que es el gran उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर
0: अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग
1: अपने

만지다, 잔디, 드라마, 스포츠, 파이파이, 이런 것들만 잡아. 아마리가 사이, 아가시와니 .gov.in

0: मेरे मन की बात को समझ में, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी कौशल मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कोई सुझाव देंगे तो जरूर मुझ तक पहुँच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए

0: आपके मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
1: आप भी पहुंच है।

करती थी, अंकल यहाँ जा रहा थी। समीर की बोलते आनंद मिलता

सच बताऊं अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7-7 हजार रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ सबसे बोल रही है कूलर फ्रिज लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी।

तेरे मन की बातें समझना अवसर मार्ग नई दिल्ली अगर कुछ भी सुझाव देंगे जरूर मुझ पर पहुंच जाएगा।

0: पीते रहे। मैं तो मैं गाना सुनना था, फिल्म है दिल अपना और प्रीत राय, और गायिका इसका लता मंगेशकर और शंकर जयकिशन इसका संगीत दिया है, और गाने का गुण और वही है दिल अपना और प्रीत राय, इसमें है ये रीत बनाई।
1: बहुत ही खूबसूरत गीत, हम आपके लिए लेकर

0: दिनेश सर, देखो मैं जाता हूँ अपने, मतलब मैं अभी शाम को संगीत सीख रहा हूँ, गाने का कोर्स सीख रहा हूँ।
1: तो
0: यस मैम।
1: और

0: गोरखपुर आदित्यपुर से हरिजी प्रसाद
1: हार्दिक स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हेलो
0: जी मैडम, और गर्मी से तो बेहाल है सभी लोग।
1: हाँ सही कह रहे हैं कि गर्मी और
0: बीच बीच में बारिश होती है तो राहत हो जाती है।

रूम के अंदर नहीं बाहर ही जाना पड़ता, सिक्योरिटी करीब करीब 10-15 मिनट में आया।

इसलिए तुम मिल गए।

मैंने अपने पापा को बताया ना, सुनो तो मेरे पापा ने बोला हाँ ये कार्यक्रम तो पहले भी आता था। वाह बहुत अच्छी बात है मैम, किसको छुट्टी भी हो चुकी है। यस मैम, मैं अपनी छुट्टी को बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहा हूँ।

0: तो पहले से बात पूछ रही थी, पूछो हमारे। ये सुना था कि विविध भारती में एक नया कार्यक्रम आया, हेलो आपकी फरमाइश।
1: विविध भारती में नहीं, ये आया

यस मैम, वो तो बहुत जरूरी होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए।

शुरू हो गया क्या?

0: कौन सा गाना सुनना है बच्चे मन की
1: सच्ची
0: वही
1: स्कूल में
0: आपके पास

0: गुजरात अहमदाबाद और मेरा गांव केर जैसे जिला पाता मेरे अंदाज से दूसरी या तीसरी बार
1: मेरी ही गलती है।
0: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको मैं पहचान गया क्योंकि आपकी इतनी मधुर आवाज है और आप इतने स्नेह से श्रोताओं से बातचीत करते हैं तो जुड़ने का मन करता है। जनचित्र जाए और 90 साल की जो प्रसारण यात्रा है उसमें जुड़े।
1: जिस तरह से आप जुड़े हैं
0: बिल्कुल, अभी थोड़ी देर के बाद मेरा कार्यक्रम आने वाला है अहमदाबाद वडोदरा पर, यानी एक श्रोताओं को जो बुलाकर आकाशवाणी जो एक सम्मान करती है तो उसमें आकाशवाणी का जितना हम आभार माने इतना कम है दीदी।

0: की स्थिति अभी बिल्कुल क्योंकि मैं अहमदाबाद में से बात कर रहा हूँ, वहाँ बेहतर स्थिति आजू बाजू करनी होगी। और अगर हो सके तो पाटन आप कभी भी जाओ तो पहले रानी की वाव की मुलाकात अवश्य लो। तो शाम को 6 बजे बंद हो जाता है, मैं सूचित करूँ आपको, क्योंकि 6 बजे के बाद आप जाओ और फिर बाद में वो कहने अंदर जाने की परमिशन नहीं होती, तो पहले जाओ। और जो हमारी स्थापत्य कला है जो बहुत पुरानी वावड़ी है, तो आपको ऐसा लगेगा नहीं ये पहले राजा महाराजाओं ने कितनी स्थापत्य कला यानी कारीगरों से बनवाई है। तो ये एक हमारी एक विरासत है, वो विरासत को हमें समय मिलने तो देखना चाहिए।
1: और यही आज वो कल हो जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और तो देखा जाए तो भारत का कोई ऐसा शहर या ऐसा गाँव ऐसा कोई नहीं है कि जहाँ कुछ नहीं देखने वाला, सभी जगह पर देखने वाली चीजें हो, कोई नदियाँ है, कोई प्राकृतिक स्थान है, लेकिन भारत की ऐसी नगरी है, ऐसे शहर है, ऐसे गाँव है, तो हर जगह पर हमें अच्छा ही लगता है।
1: आप

0: नैनो का ये कवर यानी क्या परिधान है और इसकी जो कारीगरी है वो
1: दाम इतने ज्यादा है क्योंकि इसमें
0: बहुत मेहनत पड़ती है और बिल्कुल पतले धागे से बनाए जाते हैं पटोले।

0: पुरानी फिल्म का गाना है ये लू लू करे,
1: बहुत खुश
0: और कभी कभार हम इसे तो आप इसी को श्रोताओं को बुरा लगे तो माफ करना क्योंकि एक लोकप्रियता का कार्यक्रम है ये जो जमशेदपुर फोन इन कार्यक्रम, तो हमें जुड़ने का मन करता है लगाएंगे।

भले अलग अलग घरों में रहते लेकिन हो सके तो शाम के वक्त एक साथ खाने का करे यानी तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसमें से हमारे परिवार में सबको एक दूसरे की बातें हमारी जो चिंता है

tan basit es. ठीक है मैम, आप कैसे हैं? गर्मी तो बहुत पड़ रहा है।

তখন তিনি উৎসবের সঙ্গে অনেক হয়েছিলেন।

0: 今天的人发什么神经病啊？来替我的提醒。
1: 不是，
0: 不是。OK。
1: 在21मैं भी सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है
0: और उससे मेरा क्या फायदा
1: देखो फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं से पहुंच जाओ
0: तो

0: ही ताजे रहते थे, कभी भी सफेद केस सीधा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आगे
1: सुनना न भूले। कार्यक्रम उद्यालय उनकी यादों के

निर्वाणों का स्तर सुनिए, हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थोड़ा आप चलिए, थोड़ा हम चलिए और इसी तरह से सीधा सफर करके मंजिल को तय करें। ये संगीत के इस दिलचस्प सफर में होते हैं आप, हम और विविधाती साथ साथ हैं। थोड़ा आज बहुत ही जगह में हमारे गीतों को भी पहचाना है, शब्दों को भी पहचाना है जो हमारे भारत में पीछे हुए हैं। हमारे नए श्रोता भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया अपने कमेंट भेज सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए लॉगिन कीजिए www.facebook.com/bbsmumbai और भेजिए अपने कमेंट अपने प्रतिक्रिया। थोड़ा आज की इबारत अब एक बार आपकी प्रस्तुति है, जैसे हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इसे पढ़ भी लिया है, हमारे रेडियो श्रोता भी इस इबारत को सुने और अंदाजा लगाने के लिए आज कौन से गीत हो सकते हैं। आज से रास्ता पूछा जो आईने से, आईना यही बात करने लगा, मासूम सा चेहरा जरा बता उस जुल की माने, वो जो रंग रही से गया कहीं, बता मेरा हम सफर कौन है बता। एक सीधा आदमी में उभरने लगा, वही कजरा वही गजरा वही प्यार में दिलदार का लगा, कभी मोहब्बत कभी लड़ाई

Vagina, even to those who register now or monetize for the marriage, from a short on many pieces of the institution. It's not the same that she invited to release from Vagina, even to send me to train to modify to use the Mokomanda family. In some women, I am his Kamashka is to grant me. But even if they do think Margaret or Sissy comes up for the Rupi over there, the women who have dormant in some could go home that ahead. Have I mean, तब आई आई नाम से खजाना सिखाता है पंतों का अंत जो सुकून की तरफ होता है वो अद्भुत है चली जाना जरा ठहरो आई नाम का ये कहना दिखाता है कि खुद के साथ निकाल जब वक्त कितना प्रीति होता है एक और छोटा लिखते हैं कि आज के दौर में जहाँ हर कोई अनजाना है वहाँ आई मैंने खुद को देखकर ये इतना खोना कि कोई तो है जो मुझे गहराई से समझता है एक और

Okay

ಮಾತಿಗಾಗಿ ಪ್ರ

जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं को जन आंदोलन के रूप में जन सहभागिता के रूप में परिवर्तित करने का

उसको ये रंगदाता दिवस मनाया जा रहा है। रक्त प्रदर्शन में जितने रंगदाता हमारे सिमडेगा जिले में हैं

लिखना है कि दोनों दीपक जी भंडार है, इनके प्रतिष्ठान में अवैध रूप से कीटनाशी है वो पाया गया है, इनके पास अनुज्ञप्ति नहीं। साथ ही साथ बीज और खाद में कुछ अनियमितताएं भी पाई गई है और उस व्यवस्था को देखते हुए जो मैं इनके स्पष्टीकरण और क्योंकि अवैध रूप से बीजा अमाउंट में पेस्टिसाइड है जो जहर है और एक्ट के अंतर्गत प्रोहिबिटेड है बड़ी मात्रा में पाया गया है,

event

भगवान से मिलता है, उसने बहुत सारे शिष्य दर्शाए गए हैं। आपको वो फिल्म वो अभिनेत्री इसके बाद हम देखते हैं कि आज प्रसारित होने वाला फिल्म सफर कार्यक्रम में कुछ गीत उन्होंने दर्पण है, दर्पण के उन्होंने बहुत सारे गीत लिखे हैं, लेकिन अगर आप टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग गीतों का जिक्र है श्रोता, और जरूर दर्पण के भी गीत हैं। इस श्रोता लिखते हैं कि अच्छी इबारत में उसमें हुक्म की हसरतों उमंगों तरंगों का जिक्र है, जब इश्क़ और मान ये दिल एक हम सफर हंगामे और हंगार की चाह करता है, दूसरे दिल की भावनाओं को समझे और जीवन सफर का हम सफर बने, इबारत है संगीत से मैं सफर की तीन गंगा जिसकी लगाने के लिए हम छोटा रंग भी देख रहा है। तो जी हाँ, कार्यक्रम तो शुरू हो चुका है श्रोता। एक और श्रोता ने लिखा है कि दर्पण की बात देख कर हम तो गीत गाता फिल्म का गीत ज्यादा आ गया, जिसमें पूरी सिंचाई का राजी जा रही है, मैं वही दर्पण रही। और एक और श्रोता लिखते हैं, आईना से चेहरा देखने के काम नहीं आता, आईना हमें मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे से कोई दर्द का एहसास नहीं दिलाता है, आईना हर देखने वाले को सच्ची दिखाता है, देखने वाला आईने में क्या दिखना चाहता है, जो रूप भी आईने के सामने आता है, आईना भी इस रूप का

and he said हमारे सामने आए हैं और इनके तो आईना दिखाना चाहता है और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है फिल्म के बारे में जो हमने सवाल पूछा था मोहिया जी फिल्म का वो भी क्या देना चाहिए हम लोगों की है और इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो वही जमीन लास्ट इस्तेमाल किए गए हैं मधुबना पर गीत है और हमारे श्रोता ने लिखा है कि भारतीय उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद को कांच में भी जमीन लास्ट कहा जाता है इसे पूरी नगरी

कर बहुत सारी जर्नियाँ बातें हैं और बहुत सारे शब्दों में चलाओ बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी कलाकृतियाँ हैं जो भारत में प्रसिद्ध हैं और जो व्यापार में भी लाई जाती है, यानी उनका जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो इस बारे में भी अगर आप जानते हैं तो आप जरूर लिखें। और शीशे के जो जहन होते हैं वो भी अलग होते हैं, कुछ एक मीनाकारी और कुंडली की तरह का बनाया जाता है जिसमें मीनाकारी होती है। तो ये पारंपरिक जो जीवी है जो है वो राजस्थान के एक शहर में बनाई जाती है। तो इस शहर के बारे में आपको पता है जहाँ कुंडल और मीनाकारी का काम होता है। एक हमारे श्रोता जी कहीं कि लिखी है कि शीशे की एक सुंदर नाटक वस्तु यानी आईना दर्पण जो किसी भी चीज का सटीक प्रतिबंध प्रतिबंध दिखाता है, सजा को आईना खुद को स्मार्ट दिखना रखना ये काम दर्पण की सहायता से आसान बन जाते हैं। मन का दर्पण सच्चाई का प्रतीक होता है जो आत्मबोध के साथ नकारात्मकता से बचाता है, आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। तो दर्पण जब घर में रखा जाता है तो बहुत सारी बातों का भी ध्यान रखा जाता है। थोड़ा जैसे कि हमारे ईश्वरदान लिखा है तो क्या आप दर्पण को कहाँ रखना है इस बारे में भी ध्यान देते हैं तो जरूर बताइए। और श्रोता ने लिखा है कि आईना तो वही रहता है मगर उसके साथ हर रोज बदल जाता है, कभी थका हुआ कभी बिखरा हुआ तो कभी संग्रह हुआ। ये सच है कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता लेकिन पूरा सत्य नहीं दिखा सकता। आईना किसी की झुकियाँ तो दिखा देगा पर किसी की किसी की थकान नहीं मुस्कान को दिखा देगा पर उसके पीछे छोटे दर्द को नहीं बता सकता। एक और श्रोता ने लिखा है वस्तु में एक आईना की है जो जैसा है उसको व्यवस्था ही स्वीकार करने की जहन क्षमता रखता है। पूरी निश्चलता के साथ आईने की जो सबसे बड़ी खूबी है जहाँ की जमीला उसे उसी रूप में लौटा देता है। इसलिए वो कहते हैं कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता, उम्र दर उम्र और बदलते वक्त के दो ही साक्षी होते हैं, सजा समय और दूसरा आईना। हम इस बात को कभी समझ नहीं पाते मगर सच यही है आईना अपनी मौजूदगी में हमें खुद से मिलने की आजादी देता है। समय का केवल उसी के पास सांस होता है तुमको उसी से रूबरू कराने का।

come up with my before going to Congress to see how I think and how much you can do. The school has done the advancement of the United States to buy a position. सभी का हम सकती है और जो हम खुद से मदद कराती है और जो है आई जो कभी छोटी ही बोला करता आपको प्रतिबंध जैसा है आपका प्रतिबंध जैसा है वैसा भी उभरता है वक्त के साथ बदलती चीजें से लेकर हर उन बदलावों का गवाह होता है जो उसमें प्रतिबंध होते हैं और जो कुछ जीत भी मैंने लिखा है एक और पता ने लिखा है कि बहुत कम ही निकालते हैं हम दूसरे में अक्सर आओ इस मुलाकात से जरा आई में शुरू कर लेते हैं स्थिति तो है जो जैसा है वैसा ही दिखाता है सिर्फ आंतरिक भावनाओं को छोड़कर और जब भी अकेला होता हूँ मैं जब भी अकेला होता हूँ तो आईने के सामने खड़ा होकर अपने आप को देखता हूँ तो महसूस करता हूँ कि कोई तो है मेरे पास और उसी समय धीरे बदलता जीत दिन को यह सुकून दे जाता है आज की इबारत पढ़ने से पता चलता है कि बड़े रोमांटिक गीत सुनवाए जाएंगे कविता में तो कुछ जीत भी उन्होंने बताई है जिससे कुछ जीत जो है वो मिलते ही है एक और श्रोता ने लिखा है कि आज का सुंदर सफर आईने के साथ शुरू करना और आईने को लेकर पूरा करना है मैं वही दर्शन वही अपने आप को जीवन दिखाने के लिए लोग बालिका भी करते हैं चाहे परमानिश लगा लेते हैं जब वो आईना देखते हैं तो आईना अपनी सूरत और उम्र दिखाता है

पर बातों का जिक्र आज गीतों के जरिए आपके सामने आ रहा है। कभी कभी तो आईने के सामने खड़े होकर हम बातें भी करते हैं, कभी अपने आप से कुछ कहते हैं तो कभी अपने आप से

आपने बहुत रिलेटेड फिल्म की शुरू किया है, मैंने कभी करना चाहता था कि था इस फिल्म में आपने सुना मेरे नाम वो फिल्म का भी जो साधना पर जो मारे गया अन्ना शाह की गलती एक सौ कभी चलने के लिए भी आई में आईना उन्हें साफ कर दिखा दी है आईना साफ कर दी साफ कर एक बार अपने नमक के गलत को भी साफ कर देखें हर बार गलती से मिल जाए कि नहीं होती एक बार अपने अंदर भी साफ लिए एक सौ कभी चलने के आज के ऊपर से गर्द नहीं बरती आईने की बात है आईना हर किसी के चेहरे की सच्चाई बना किया करता है और इस दिन की ये उपमा चेहरे की कमानी है एक चेहरे की हकीकत को मिठाइयों भी दिखाने वाले उस आदमी को बाहर आने के समान अभी देख के पूरी कर जा सकता है लेकिन उस हृदय रूपी आदमी के देख के उस आदमी के मन दर्पण की अभिव्यक्ति करने पूरी तरह समर्थ हुआ करते हैं और ऐसे ही अभिव्यक्ति को जो है वो बता रही थी कि उनके बारे में और आईना बहुत सारी अभिव्यक्तियों को ध्यान में हमारे लाता है थोड़ा ऐसे ही गीत आज हमने पिरोए हैं और अगला गीत भी बिल्कुल ऐसा ही है एक और स्वतंत्र फिल्म के दर्पण जीवन से भी रंग दिखाता है मोहब्बत से कुछ आरोप न मनाना अपनी और जीते हुए रिश्तों की परछाइयां अगर आईना एक एहसास कराता है कि सच्चा हम सफर कोई और नहीं बल्कि स्वयं की स्वयं का दिल और अपनी पहचान है और और श्रोता ने लिखा है कि आईना हकीकत बयां करता है कुछ पाता नहीं सामने जाता है आईना कुछ भी दुनिया लिखा है आईना वही रहता है जो कि वही रहता है चीजें बदल जाती है वैसे कांच की बात अगर करें श्रोता जैसे आईना बनता है जिसके बहुत सारे आभूषण भी बनते हैं खूनदान भी बनते हैं और खिलौना जब खिलौने भी बहुत बना करते थे और हमको खरीदा भी करते थे कांच के खिलौनों अगर कोई जाते थे तो आप उनसे फायदा कर सकते हैं और बहुत सारे चीजें कई सारे ऐतिहासिक मामलों में लगाई गई हैं उनके बारे में

हम इसमें

है आपको कलाकार बताना है। इस पता में लिखा है कि नवरात्रि दीपावली और शादियों के दौरान शिशु के काम वाले कपड़ों की मांग बढ़ जाती है। गुजरात का प्रसिद्ध फिल्म चोली और राजस्थान का घाघरा चोली बिना मेरा रिवाज के अधूरे माने जाते हैं। अभी समय में ये कला सिर्फ पारंपरिक परिधानों तक ही सीमित नहीं बल्कि पश्चिम का ही पहना भी जैसे जैकेट कुर्तियाँ स्पोर्ट्स बैग और होम डेकोर के लिए भी इसका खूब इस्तेमाल होता है।

find out the other, didn't you? If you could do it.

विषय पर आधारित है। दोस्तों, सांस दिन और रात के मधुर मिलन का वो क्षण है जहाँ प्रकृति अपनी समस्त थकान उतार कर एक शांत, गंभीर और सौम्य रूप धारण कर लेती है। जब सूर्य अपनी सुनहरी किरणों को समेटते हुए क्षितिज की गोद में विश्राम लेने लगता है, तब आकाश के विस्तार पर लालिमा, केसरिया और धूसर रंगों की छटा बिखर जाती है। ये दृश्य केवल आंखों को ही नहीं, मन को भी एक अद्भुत शांति से भर देते हैं। सांस का समय जीवन के उस पड़ाव का प्रतीक है जहाँ गति की तीव्रता मन होकर आत्मचिंतन में परिवर्तित हो जाती है।

0: पश्चात ये सांझ की घड़ी ठहर कर संत मिलने का अवसर प्रदान करती है। पक्षियों का अपने घोंसलों की ओर लौटना, गायों का बच्चों के पास आना जमाना, मंदिरों की घंटियों का मधुर निनाद और आकाश में उभरती प्रथम तारा रश्मि, ये सभी दृश्य सांझ को एक आध्यात्मिक गरिमा प्रदान करते हैं। भारतीय संस्कृति में सांझ का विशेष महत्व रहा है। इसे संध्या वंदन का समय माना गया है। जब मनुष्य अपने दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर ईश्वर का स्मरण करता है, ये समय आत्मा की शुद्धि और मन की एकाग्रता का प्रतीक है।
1: कहीं

होती है। जैसे दिन का अवसान रात्रि का द्वार खोलता है, वैसे ही जीवन में प्रत्येक क्षण भी एक नई दिशा का संकेत देती है। साहित्य और काव्य में भी सांस को विरह, प्रतीक्षा और स्मृति का भावपूर्ण रूप मिला है। प्रिय के वियोग में डूबी नायिका के लिए सांस का धुंधन का उसके मन की व्याकुलता को और गहरा कर देता है। वहीं किसी साधक के लिए यही सांस और ध्यान और समाधि का पावन क्षण बन जाती है। सांस केवल दिन का एक भाग नहीं बल्कि जीवन दर्शन का एक सजीव प्रतीक है, जो हमें संतुलन, शांति और आत्म अवलोकन

0: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं। एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आगे।
1: तो सुनना ना,

मौत बच्चे सेक्शन मानसून अगले दो तीन दिनों में कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 2

emphasize on this, that that's the best thing about the deal when it has you. ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। इन्होंने लोगों से योग को अपने

समय तीन दिवसीय फसल उत्सव राजा आज पाली राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मानसून और उलिया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।

0: सचिन पश्चिम मानसून अगले दो तीन दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।

0: जीवन से जुड़ी कुछ यादें, जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद केस सीधा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आगे
1: तो सुनना न भूलिए कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14

ये काफी समाज सेवा है और अपना भी सारी इसमें भी होता है।

हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3:01 हो रहे हैं और वक्त चला है कार्यक्रम मन चाहे गीत का। तो मन चाहे गीत कार्यक्रम में हम अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम को बिल्कुल ध्यान के लिए सुनिए श्रोताओं, कहीं आपकी पसंद के गीत से इसकी शादी तो नहीं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर सुनने वालों का।

सेकेंडरी रियाज साहब जो होते हैं, मैं वहाँ रियाज शमजुद्दीन कवी और मोहम्मद रिहान और इसी गीत को सुनना चाहती थी जबलपुर से जमीन। और इस गीत से पहले सुबह आपने सच के धागे बनने के लिए सुना था आनंद ऋषि का ये सब संस्थान से हमारे आवाज़ का मन चाहिए कार्यक्रम में संपन्न करने के लिए श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत।

शीर्षक अभिशप्त गांधार का दूसरा और अंतिम भाग, जिसके लेखक हैं डॉक्टर शंकर शेष, निर्देशक सुदर्शन कुमार। तो आइए सुनते हैं नाटक अभिशप्त गांधार दूसरा।

0: tu madre che sei macara. Dove ho che è mio bebe.
1: Certo,
0: caro.
1: Sì?
0: Non è mai.
1: उसका तर्क है पांडवों ने अपनी धन संपदा राज सब कुछ युद्ध में हार दिया है। दासत्व से मुक्त होने के लिए पांडवों के लिए 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की शर्त रखी गई थी। ये अवधि पूरी होने पर पांडव दासत्व से मुक्त होकर स्वतंत्र हो गए थे। उन्हें उनका राज्य वापस लौटाया जाएगा ऐसी कोई शर्त नहीं थी। ऐसी स्थिति में उन्हें 5 गांव देने की बात कहां से उत्पन्न हो गई।
0: उसका तर्क अनुचित है क्या?
1: तर्क तो केवल तर्क ही है राजधानी, किंतु सत्य ये है कि कौरव और पांडव दोनों हेतु एक ही वंश थे। उनके बीच ईर्ष्या द्वेष वैमनस्य शोभा नहीं देते। यदि युद्ध हुआ तो चाहे पराजय किसी की भी हो विनाश तो वंश का ही होगा।
0: तो फिर आप पांडवों को समझाइए कि वे भूमि के लिए हाथ न करें।
1: कोई लाभ नहीं होगा।
0: क्यों?
1: उनकी ओर से समस्त निर्णय श्री कृष्ण लेते
0: हैं। वो क्या सोचते हैं?
1: वो ही तो सारे विवाद के मूल में है। कहते हैं दूत में रखे गए पड़ों की कोई मान्यता नहीं। वो सब शकुनि का छल था।
0: छल? वो जिन्हें स्वेच्छा से दूत क्रिया में भाग लिया था शकुनी की निपुणता और अपने दुर्भाग्य के कारण वो जिससे पराजित हुआ इसमें छल कहाँ है?
1: इस विवाद से कोई लाभ नहीं गांधारी। करना से बचने का केवल एक उपाय है। दुर्योधन को समझा दो कि पांडवों को 5 गांव देकर उनसे मैत्री कर ले।
0: उस पर मेरा बस नहीं, वो मेरी चिंता कहा
1: और इसके लिए कौन उत्तरदायी है? तो चुप क्यों हो गई? उनसे भी चीज सुनी जाती है। क्यों उसका सबसे पुत्र उसके अधिक को भी वर्ष मानता है?
0: फिर वही सुनना।
1: उल्ला के अधिशाप से तुम बच नहीं सकती गांधारी। कुंती ने अपनी कटुता से मुक्ति पा ली किंतु तुम
0: कुंती के साथ मेरी तरह कोई छल नहीं हुआ।
1: नहीं हुआ था। कुंती जानती थी कि उसका होने वाला पति रोगी है। उसके स्वप्न तुम्हारी तरह चूर चूर नहीं हुए। कोई नहीं उसने अपने सुख को चलता और संज्ञाहीनता का पर्याय नहीं बनने दिया। निराशा के मध्य भी उसने जीवन की सार्थक व्यर्थता को भी जीवन को तुम्हारी तरह नकार में किया। कुंती के बच्चे स्नेह और मातृत्व के प्रतीक है। तुम्हारे बच्चे खड़ा और तिरस्कार की उपज है। यदि ये बच्चे द्रौपदी का वस्त्र नहीं खींचेंगे तो और कौन खींचेगा?
0: अभी कुछ नहीं बिगड़ा है महाराज। उसी प्रकार जरूर तुमको संसा दी। पांडव 5 गांव मांग रहे हैं। दे दे उन्हें।
1: दुर्योधन को

0: नहीं मार रहे, आज चिंता क्यों करते हैं? कौरवों के साथ पितामह भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसी महारथी है, उनकी सैन्य शक्ति भी पांडवों से अधिक है। आज तो युद्ध का पहला दिन था, दोनों दल बराबर रहे। सत्य तो यह है महारानी कि पांडव सेना आज पीछे है। हाँ महारानी, राजन तुम सुन रहे, आज आपके नौ पुत्र मारे गए।
1: नौ पुत्र?
0: हाँ महाराज, जलसंध, सुशेण, वीर बाबू, भीम।

0: भीम ने आपके दूसरे पुत्रों का वध किया, उसने ही महाराज दुर्योधन का भी वध किया।
1: दुर्योधन ने भी मारा जा सकता, मैंने उसे वक्त की कोशिश की। संसार में ऐसे पुरुष का जन्म नहीं हुआ है जो दुर्योधन को मार सके।
0: नहीं महारानी, मैं सत्य बोल रहा हूँ। जी नहीं महाराज, दुर्योधन की जंग हरा गदा से प्रहार करके उनके प्राण को

0: तो ये होता युद्ध से थक कर एक सरोवर में विश्राम कर रहे थे। युधिष्ठिर और उनके भाई उन्हें खोजते हुए सरोवर तक पहुंचे। युधिष्ठिर ने उन्हें युद्ध के लिए ललका, तुम पांचों पांडवों में से किसी एक को युद्ध के लिए चुन लो, यदि तुम विजयी हो गए तो तुम सारे राज्य के स्वामी हो जाओ। देवी, महाराज दुर्योधन ने अपने कला कौशल से भीम को लगभग परास्त कर दिया था, परंतु कृष्ण ने अर्जुन को सांकेतिक भाषा में समझाया कि यदि भीम महाराज दुर्योधन की चंखा पर प्रहार करे हो तो विजय हो जाएगा। भीम ने कृष्ण का यह संकेत तुरंत भाप लिया और सिंह की भांति झपट कर चंखा पर प्रहार किया। महाराज दुर्योधन कटे वृक्ष के भांति भूमि पर गिर पड़ा।
1: संतान हो गई सब देखना।

0: ही पहुंचता है।
1: ये जानकारी क्या मैंने युद्ध रोकने का प्रयत्न नहीं किया था? क्या मैं दूत बनकर आपकी राजसभा में नहीं आया था? किंतु आपके पुत्र ने सुनी नहीं कहा। राज्य लोग द्वेष को पूर्ण कर दिया।
0: मैं तुम्हें युद्ध रोकने का वास्तविक

Thank you.

0: पोजीशन का ऑफिसर बनने के लिए आपका टू ऑफ ट्वेंटी के आवेदन 20 मई से खुले विवरण के लिए
1: ऐसा हुआ कि आप बहनों ने

0: मैंने घर में तो हम लोग साथ में ही रहते थे ना, तो उसमें बातचीत तो रोज ही होती थी ही। और रोज बातचीत होने में जनरली मजाक भी बहुत करते थे।
1: अच्छा हाँ
0: जी, उनको आप अगर देखे तो उनका जो स्वभाव था खुलकर हंसते थे, हंसना उनका इतना खुलकर था जो एक बच्चों की तरह हृदय जो साफ रहता है ना, वैसे ही इंसान ऐसे हंस सकता है। तो बैठ के बातचीत का तो बहुत मौका मिलता था, लेकिन जनरली बातचीत होती थी तो माँ के खिलाफ होती थी। आज तुम्हारी माँ ने जो दाल में हींग अच्छी नहीं डाली
1: जी,
0: और माँ वहाँ पर खड़े होकर सुनते हैं, तो बेटा आज का जो खाना था वो थोड़ा सा हींग ठीक नहीं थी, फिर मजाक में सारी बात तो वो चीज माँ को बहुत मन में खटका देती थी।
1: अच्छा
0: ठीक है, मतलब वो भी मजाक में, लेकिन वो बोलते ठीक है आज हींग ठीक नहीं हुई ना, ठीक है तो अब तुम ना आप एक काम करिए कि आप मालवा से ही हींग मंगा लो। तो वैसे ही बातचीत बैठ बैठ के हंसी मजाक चलती थी और काफी कुछ बातचीत तो काफी होती थी जैसे घर में परिवार में होती है।
1: कभी कभी जी ने आप बच्चों से पूछा हो भी पढ़ाई कैसी चल रही है, पढ़ने में कैसे हो, कुछ लिखते हो पढ़ते हो, मेरी तरह कुछ कविता लिखने की आदत है तुम लोगों में, तो कभी ऐसा भी कहा उन्होंने?
0: नहीं नहीं नहीं उन्होंने कहा कभी लिखना नहीं, जो करना हो दूसरा कुछ करो, लिखना और फिल्म इंडस्ट्री के बारे में मत सोचना, और लिखना कभी तो कभी नहीं बनना, ऐसा उन्होंने कहा कि भाई आपको ठीक है मैं बहुत हो गया, अगर पैसे कमाने हैं तो इसमें मत पड़ा, कुछ और काम करना। तो फिर मैंने और कुछ काम किया और तब भी उनको थोड़ा सा बुरा लगा था जब मैंने अपना काम शुरू किया, पेंटिंग करना, लोगों को सिखाना, ड्राइंग सिखाना,
1: तो उन्हें बुरा क्यों लगा?
0: हाँ तो यही बात है कि उनको बुरा क्यों लगा, वो तो कभी प्रदीप की बेटी है और वो बाहर जाके पैसे कमाएगी।

0: जैसे सब एक ट्रेडिशनल पिता उनके मन में जागरूक हुआ कि ये काम आप क्यों करेंगे।
1: लेकिन जब तक आप भी बड़ी हो गई थी,
0: कैसे बड़ी हो गई थी,
1: आप बन चुकी थी, आपकी भी अपनी सपने थी, अपनी शौक थी,
0: तो सब माने कहा कि नहीं, हमें तो उसको अपने पैरों पे खड़ा करना है, उसको अगर ये अच्छा लगता है और वो उसमें आगे बढ़ना चाहती है तो क्या हुआ। तो ये कोई थोड़ी कहेगा कि प्रदीप जी की बेटी है तो क्यों पैसे बाहर जाके कमाएगी। जाएगी बाहर जाके, मैं बहुत सारी डेमोन्स्ट्रेशन देती थी कॉलेजेस में, स्कूल्स में। उसके बाद में उनको लगा कि नहीं नहीं ये तो अच्छा कर रही है, तो फिर कोई भी आएगा उनके पास तो उनको लेके आएंगे कि देखो मेरी बेटी का ड्रॉइंग, देखो देखो मेरी बेटी ने आज ये पेंटिंग बनाया।

0: था, मतलब कि ऐसा कवि देखा जो बहुत सालों के बाद एक ऐसी भाषा यूज कर रहा था और छायावाद वगैरह जो है, तो निराला जी ने वो सुना उनकी कविता और उन्होंने उनके ऊपर पूरा एक आर्टिकल लिखा कि ये नवीन कवि प्रदीप जो आगे चल के बहुत आगे बढ़ेगा ऐसा।
1: जी जी, तो जैसा कि हम कह रहे हैं कि उन्होंने देशभक्ति गीतों को बहुत लिखा, बहुत बड़ी तादाद में उनके भीतर हम देखते हैं, क्या कभी उन्होंने रोमांटिक गीत भी लिखे?
0: रोमांटिक गीत भी अच्छे अच्छे लिखे हैं और वो भी इतनी अच्छी भाषा में लिखे हैं कि कोई भी कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई वल्गर बात आई। प्रेम की बात भी उन्होंने कितनी अच्छी की है, क्योंकि मेरे जीवन में किरण बन के बिखरने वाले बोलो तुम कौन हो, बोलो तुम कौन हो,
1: क्या बात है,
0: क्या बात। तो मेरे जीवन में किरण बन के बिखरने वाले, इतना सुंदर से उन्होंने संबोधन किया है प्रेमी को। या फिर दूसरा है कि ना जाने कहाँ हम थे, ना जाने कहाँ तुम थे, तो ये भी बहुत सुंदर सुंदर है। और एक हल्का फुल्का सा गाना भी है जो जगदीप के ऊपर फिल्माया गया था, वो दिलदार बोलो एक बात, तो ये भी कितना सुंदर
1: कौन सा गीत है
0: और कभी भी कोई भी इसको गा सकता है।
1: हर पल के गीत,
0: हर पल मौके में रोमांटिक गाने भी उन्होंने लिखे और ज्यादातर युगल गीत थे।
1: और

0: सुने भी सही और बात भी की।
1: जी जी बिल्कुल।
0: उन्होंने कविता शुरू की थी रोमांटिक कविताओं से और उसके बाद में जो है उनको देशभक्ति की कविता लिखने का मौका मिला और फिर उन्होंने उसी लाइन से अपनी कविताएं लिखी। तो एक रोमांटिक उनकी कविता बहुत शुरू शुरू में थी और वो है, मेरे छंदों के बंद बंद में तुम हो प्रिय, तुम हो बरन बरन से विहंगों का कल कूजन, क्यों बरबस हर लेता है जन जन का मन, मैं खोज रहा था इस मिठास का कारण, हंस लिए तभी तुम हुआ रहस्योद्घाटन।
1: क्या बात।
0: और तुम मेरे काव्य स्वस्तिकों के कुमकुम हो,
1: हाँ
0: मेरे छंदों के बंद बंद में प्रिय तुम
1: हो।
0: क्या बात।

0: भी उनकी एक कविता है जो रोमांस से है
1: जी। और एक खासियत है कि इतना बड़ा कवि जो कि जन जागृति जिन्होंने पैदा कर दी, जिन्होंने देश के लोगों के दिलों में पैदा कर दिया, वो कभी रोमानी फिल्म माहौल में भी थे जहाँ रोमानी कविता उनकी कलम से निकली, रोमानी गीत निकले इतने शानदार तरीके से जिन्हें हम आज भी गुनगुनाते हैं। तो हम बात करते हैं 1997 की, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष था कवि प्रतिष्ठी के लिए, बताइए कैसे।
0: उनको 1998 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला जो 1997 का दादा साहेब फाल्के गिना जाएगा
1: जी,
0: लेकिन जब मिला तो वो इसमें मिला 98 में। दादा साहेब फाल्के अवार्ड बहुत इम्पोर्टेंट है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, लेकिन तब भी वहाँ के जो आयोजक थे वो थोड़े चिंतित थे, क्योंकि प्रदीप जी ने बीच में ये बोल दिया था कि मैं कोई अवार्ड नहीं लूंगा
1: जी।
0: तो उन्होंने कहा कि हमको चिंता है कि हम तो आपको दे रहे हैं लेकिन आप आएंगे कि नहीं आएंगे
1: जी।
0: फिर हम परिवार वालों ने उनसे बहुत विनती की कि नहीं बापू, आपके लिए नहीं हमारे लिए आप ले लीजिए, क्योंकि ये हमारा भी गौरव बढ़ाएगा और आपको मिलेगा तो ये हमें अच्छा लगेगा। तब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और उनको लगता था कि मैं उतने दिल्ली तक नहीं जा पाऊंगा, तो हम सब ने कहा कोशिश करेंगे आपको अच्छे से ले जाएंगे, व्हील चेयर में ले जाएंगे। तो ये पहली बार हुआ कि स्टेज के ऊपर व्हील चेयर में लेकर के दादा साहेब फाल्के अवार्ड लेने के लिए कोई व्यक्ति को लेके गए और आगे चल के प्रेसिडेंट आए। प्रेसिडेंट कभी भी आगे नहीं चलते हैं, वो वहीं खड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी व्हील चेयर लेके हम अंदर गए तो आगे चल के प्रेसिडेंट आए देश के और उन्होंने उनको सम्मानित किया। और पहली बार हुआ कि जब स्टेज पे वो गए तो दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है पूरे उसमें गूंजा।
1: क्या बात है,
0: विज्ञान भवन में कार्यक्रम था और वो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि तब गाना बजाया जाता है, तो वो नियम को तोड़ा गया, उस स्टेज पे हम लेके गए उनको, वो गाना बजा और आप नहीं मानेंगे उस वक्त भी खड़े खड़े खड़े लोग रोए हैं
1: जी।
0: और ये मुझे शत्रुघ्न सिन्हा जी ने भी बताया कि हम रोए, यश चोपड़ा जी वहाँ खड़े थे, वो बाद में दौड़ के आए कि प्रदीप जी आज आपने हमको भी रुला दिया
1: जी,
0: वो भी ऑडियंस में थे
1: जी।

0: संतुष्ट थे और उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ तुम लोगों ने मुझे कहा, नहीं तो मैं इसको भी मना कर देता, लेकिन ये मेरी आखिरी जीवन की पड़ाव में ये मिलना मेरे लिए बहुत मेरा भाग्य है।
1: जी बिल्कुल। तो बताइए कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
0: जो भी आपके पास हो, अगर मेरे जीवन में किरण है तो वो करवा दीजिए।
1: चलिए सुनते हैं। बहुत सुंदर।

0: कह रहे थे और कहें कि उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन इसके अलावा जब वो कविता नहीं लिखते थे, लेखन नहीं करते थे, तो क्या करते थे? उनके और क्या क्या शौक थे जो आपको समझ आए?
1: उनको गार्डनिंग का बहुत शौक था।
0: हाँ हाँ,
1: तो हमारे ऊपर टेरेस है, तो उस पर वो चले जाते थे और कई चीजें, जैसे उनको लगा कि ये पत्ते ठीक नहीं है, वो काटते थे। दो दो तीन तीन घंटे तक ऊपर गार्डन में अपना बिताते थे। और नीचे भी हमारे पास जितने भी आज बड़े बड़े चीज हैं, वृक्ष हैं, आम के चार हैं, दो नारियल के हैं, जामुन, जामुन समझते हैं सफेद वाले, जिसको आप क्या बोलते हैं पता नहीं, सफेद जामुन, काले नहीं, सफेद
0: सफेद,
1: जो भी होगा, उसके जितने भी हमारे गार्डन में आज जो हमारे वृक्ष हैं, वो सब मेरे पिता ने लगाए हुए हैं। जब हमारा घर बना तब पूरा आसपास में ये बड़े बड़े वृक्ष आज खड़े हैं। तो गार्डनिंग का शौक, और वो जो देखते थे कि कहीं आम के पेड़ में कहीं कीड़े तो नहीं लग गए, तो वो उसको दवाई देना, ये करना, चाहे वो खुद ना दे माली के पास करवाना। तो आज जो वृक्ष खड़े हैं वो मेरे पिता के कारण खड़े हैं। और एक कड़ी पत्ता, उसका एक छोटा सा लाए थे वो प्लांट, और आज बहुत बड़ा हो गया है और वो आज भी है उनका लगाया हुआ।
0: जी, उनकी याद दिलाता
1: है, सभी मतलब वृक्ष जो है उनकी याद दिलाता है।

0: शौक के साथ इस घर को बनाया बहुत रुचि के साथ। तो बताइए क्या है, किस तरह से उन्होंने अपने मकान को बनाया, क्या किया?
1: मकान को उन्होंने खड़े होकर के एक एक ईंट को देख के उनको जैसे लगवा रहे थे तो वो खड़े रहते थे। यानी कि उनको उन्होंने दे दिया कि आर्किटेक्ट को क्या बना लो, नहीं रोज सवेरे से शाम खड़े रहते थे कि नहीं यहाँ गलत हो रहा है, ये गलत है, ऐसे करो, ये मजबूत चाहिए सीमेंट। आज भी हमारी जितनी भी दीवारें हैं उसमें हील भी नहीं ठोक सकते आप, इतनी मजबूत है इतने सालों के बाद। तो उनका मतलब ये है हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा मंदिर है, घर नहीं है मंदिर में देखे
0: जी, जो उन्होंने बहुत ही आत्मीयता के साथ उसको खड़ा किया। हमें तो जी आज हमने इस कार्यक्रम में आपके पिता पर एक लंबी बातचीत की है। अब हम आपकी जिंदगी पर भी आते हैं। आपने ये तो बताया कि आपने लेखन को क्यों नहीं अपनाया, आपने कविता को क्यों नहीं अपनाया, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप एक जानी मानी चित्रकार हैं और चित्रों के प्रति एक आपकी जो रुचि है उसका भी उदाहरण देखने को मिलता है। तो ये रुचि आपके मन में कैसे आई, ये रुचि कैसे पैदा हुई और किस तरह की आर्ट आप बनाती हैं, हमारे श्रोता ये जानना भी चाहिए। जैसा आपने कहा कि आप घर से निकली थी, पिता ने एक बार विरोध भी किया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि आप बहुत अच्छी कलाकार हैं तो उन्हें आप पर गर्व भी महसूस हुआ।
1: ऐसा है कि मैं करीब 44 साल से पेंटिंग सिखाती हूँ
0: जी
1: जी, और मेरा आर्ट सेंटर है तुलिका आर्ट सेंटर
0: जी,
1: जिसमें बहुत सारे लोग सीखने के लिए अभी भी आते हैं। और जब मैंने शुरू किया 1982 में
0: जी,
1: तब भी लोग बहुत सारे आते थे, आज तक आते हैं। कैसे शुरू हुआ
0: जी?
1: मैं जब छोटी थी, 2-3 साल की या 4 साल की रही होगी, मेरी माँ ने मेरे हाथ में कलम थमा दी कि ये लो इस पे तुम स्वस्तिक ड्रॉ करो। एक कागज दिया और एक पेंसिल दी और कहा कि स्वस्तिक निकालो। तो वो पहली बार था कि जो छोटे बच्चे ने लाइन कर करके स्वस्तिक ड्रॉ किया
0: जी।
1: मेरी माँ खुद बहुत अच्छी कलाकार थी, बहुत बढ़िया, मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने, इतना ब्यूटीफुल उनका आर्ट था, इतना अच्छे अच्छे से वो ड्राइंग्स बनाती थी। उनमें से मुझ में आया
0: जी।
1: तो पिता का लिखना या गाना नहीं आया, लेकिन माँ का जो

करना है ड्राइंग, नहीं नहीं मुझे वो मजा नहीं आता है, मुझे लॉयर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे कुछ और कुछ करना है। तो पढ़ाई चलती रही, लेकिन उस बीच में मुझे ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कलर्स बनाती है, उनकी मालकिन मिली, बोलती है आपका ड्राइंग तो बहुत अच्छा है सुना है। मैंने बोला हाँ वो तो है। तो उसका बहुत अच्छा कहा कि क्यों नहीं आप सिखाते हो, हमारे 40 महिलाएं हैं, हाँ उनको हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सिखाइए, हमारी टीचर नहीं है। मैंने बोला मैं सिखा तो नहीं सकती हूँ। बोलते नहीं सिखा पाओगे, कोशिश तो करिए। और वो तब की बात है जब पिताजी ने विरोध किया, उन्होंने कहा 40 महिलाएं हैं, आप देखिए कोशिश करिए सिखाइए। मैंने ठीक है कोशिश करते हैं। क्या करना था, कपड़े पे फैब्रिक पेंटिंग करना था, कपड़े के ऊपर पेंटिंग करना था। उन्होंने कहा ये रहा हमारे पास कलर्स हैं, हमारे पास सुविधा है, मतलब ब्रशेज हैं, आप आइए सिखाइए। कैसे सिखाना, हमने कोशिश की, सब कुछ हो

जो लिखा हुआ है डेस्टिनी में वही हुआ। जब मैं पैदा हुई थी तो ज्योतिष ने कहा था कि ये टीचर बनेगी। वो टीचर तो नहीं बनी स्कूल की, लेकिन मैं दूसरी टीचर बन गई जी। तो वो पहली बार था, वो 40 महिलाएं खुश हो गई। वो जो कलर बनाने वाली कंपनी के वो लोग थे वो खुश हुए, बहुत बढ़िया आपने बहुत अच्छा सिखाया। और हमारे पास लोग हैं उनको भी सिखाइए, हमारे वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए आप पेंटिंग के। तो ये ऐसे शुरू हो गया। तो मेरी पढ़ाई तो मैंने कंप्लीट की, मैंने लॉ भी कंप्लीट किया, मैंने ग्रेजुएशन भी किया, लेकिन साथ साथ में ये भी चलता रहा। तो उसमें से मुझे मेरी एक पूरी जिंदगी का पूरा ट्रेंड बदल गया, मकसद मिल गया। और सिखाने में जो आनंद है वो समझ में आया कि जब स्टूडेंट आपके साथ में खड़े होके खुश होके जाते हैं वो बात ही अलग है। तो जब गुरु बनते हैं ना तो गुरु की और शिष्य की जो परंपरा है वो एक आपको अलग ही माहौल में ले जाती है और आपका जीवन बदल जाता है।

0: गया जब वो जब तक थी ही तब तक हमको लगता था कि नहीं वो हमसे ज्यादा ही अच्छा करती है क्योंकि उनकी भी एक आखिरी बात बता दूं कि वो जब मेरे पिता चले गए 98 में उसके बाद में उन्होंने जितना जीवन जिया वो एक तो रेडियो सुनती थी और दूसरा उनका काम था ड्राइंग करना जैसे ही वो फ्री हो जाती हाथ में कलम और हाथ में कोई भी जैसे पेपर आ गया कोई भी सफेद रंग का कोई भी हाथ में कलम ले तो उसमें ड्राइंग करना शुरू कर दें तो आज हमारे पास उनके हजारों ड्राइंग्स हैं अच्छा मेरे पिता के चले जाने के बाद और उनके चले जाने के बीच से उतने सारे उन्होंने ड्राइंग बनाए पूरी रात दिन जब भी उनको समय मिला कोई भी दूसरा सोचना नहीं कुछ गलत सोचना नहीं कोई दिमाग में टेंशन नहीं लेना
1: आपके लिए बहुमूल्य चीजें होती
0: बहुत बहुमूल्य चीज है मेरे पास आज खजाना है
1: बिल्कुल

0: मुझे तो मुझे ऑयल कलर अच्छे लगते हैं, ऑयल पेंटिंग जो ऑयल पेंटिंग का एक अलग सा रहता है और वाटर कलर अलग रहता है। तो पहले ऑयल पेंटिंग, दूसरा वाटर कलर, तो उसमें आपको बहुत स्वतंत्रता मिलती है। आप जो करना चाहो तो वो स्वतंत्र जो होता है ना, वो अच्छा लगता है, कहीं पर आप बंधते नहीं है। अगर आप स्कल्पचर बनाते हैं तो आप वहाँ बंध जाते हैं जी, लेकिन कैनवास के ऊपर आप बंधते नहीं है।
1: क्या करते हैं, क्या अपनी
0: कल्पना शक्ति उसमें बहुत ज्यादा स्वतंत्र है।
1: तो आपकी जो आर्ट गैलरी भी रखती है, कहाँ कहाँ आप जाती हैं अपनी पेंटिंग्स को लेकर, और अभी तक कितने?
0: आपको एक बात ये बताऊं कि मैं बहुत ज्यादा कमर्शियल काम नहीं करती हूँ जी। अगर मैं अपना एग्जीबिशन लगाती हूँ तो वो मैं बेचने के लिए नहीं लगाती हूँ, मैं सिर्फ बेचने के लिए लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं खुद ही इसका मैं मूल्यांकन नहीं कर सकती हूँ कि मेरी पेंटिंग का मूल्य क्या होगा। तो ज्यादातर मेरे जो भी जितने भी मेरी कला है, मेरी वो है, तो मैं अपने लिए रखती हूँ, लोगों को डिस्प्ले के लिए मैं बनाते जाती हूँ, लेकिन मैं बेचती नहीं हूँ। तो जब भी मेरा एग्जीबिशन लगता है, कई जगह पे लगा, और हमारी खुद की आर्ट गैलरी बड़ी है जहाँ पर हम क्लासेस चलाते हैं, तो वहाँ पर भी हमारा बहुत अच्छा डिस्प्ले वगैरह रहता है, तो लोग आते हैं, देखते हैं। अगर कोई ऑर्डर देना चाहे कि भाई आपका ये बहुत अच्छा है, तो हम स्टूडेंट्स के ऊपर उसको छोड़ते हैं, जो स्टूडेंट्स बना के उनको देते हैं।
1: बहुत बड़ी बात, आपने अपनी कला को मतलब कमर्शियल रूप में नहीं देखा है, अपनी कला को इस कला स्मृति में ले लिया है,
0: क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अपना मूल्य लगाऊंगी ना, तो हो सकता है कि मेरा काम थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब मेरा जो व्याप है वो कम हो जाएगा, तो इसके लिए मैं उसका मूल्य नहीं करती हूँ, वो वैसे ही रहता है वहाँ पर। आप मेरे कभी आर्ट गैलरी में आएंगे देखने के लिए,
1: बिल्कुल,
0: तो बहुत बड़े बड़े पेंटिंग्स लगे हुए होते हैं।
1: तो मुझे बताइए कौन सा गिफ्ट चुना चाहिए?
0: सबसे अच्छा रहेगा ऊपर गगन विशाल नीचे गहरा पाताल, क्योंकि हम अभी व्याप की बात कर रहे हैं और आसमान की बात कर रहे हैं,

0: किया है। तो आज जब आप अपने बच्चे तैयार कर रही हैं, आपके यहाँ शिष्य आते हैं, आप उन्हें सिखा रही हैं, उनका भविष्य सुधार रही हैं, किस तरह की पेंटिंग सिखाती हूँ बच्चे को आप?
1: वैसे मैं सभी कुछ सिखाती हूँ, क्योंकि ड्राइंग पेंटिंग में लगना चाहिए कि ऐसा है कि उसमें आकाश ही जिसका मतलब अंत है, इतना सारा अनंत है। आप क्या सिखाएं इसमें? आप ड्राइंग सिखाएं, आप कलर सिखाएं, आप चारकोल सिखाएं, आप हाथ से मिट्टी के आप सामान सिखाइए, आप स्कल्पचर सिखाइए, वो सब हम सिखाते हैं। और वो मैं सिखाती हूँ खुद भी, और मेरे साथ मेरे दूसरे टीचर्स भी हैं। तो सिखाने का तो बहुत सारा

0: मतलब अचानक एक अलग सी फीलिंग आई है, बहुत ही शानदार गीत, बहुत ही गहरा गीत। तो बिल्कुल जी, जब बात चल रही है आपकी पेंटिंग की, आपकी कलाकृति के बारे में, तो किस तरह की है ये कलाकृति, किस तरह की कला आप बच्चों को सिखा रही है या आप खुद से बात कर उतारती है इन कलाओं से?
1: मेरे पास जैसे अलग अलग डिजाइन, अलग अलग टाइप के मैं पेंटिंग सिखाती हूँ, लेकिन जैसे समय बदलता है तो उस हिसाब से हम एब्स्ट्रैक्ट आजकल बहुत चला है। लोगों के पास जैसे मैंने कहा बहुत स्ट्रेसफुल लोगों की जीवन है, तो कहते हैं हमको दो दिन में खत्म करना है तो क्या कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट एक ऐसी है कि जिसमें आप दो दिन में अपना मन का जो पेंटिंग है वो पूरा कर सकते हैं।
0: अच्छा,
1: अगर आपके पास समय है तो आप अच्छा सा पोर्ट्रेट करिए। पोर्ट्रेट करने में समय लगता है, अगर समय लगेगा तो आपको उतना कॉन्सेंट्रेशन करना है, ये दिमाग के लिए बहुत जरूरी है और बच्चों को सिखाना जरूरी है कि आप कॉन्सेंट्रेट करिए, मन को शांत रखिए। तो उसके लिए पोर्ट्रेट है, चारकोल है, चारकोल एक ऐसा माध्यम है जो पाउडर है, वो पाउडर से आप पूरी कला को आप कैनवस पे उतारिए।
0: जी,
1: तो ये एक है। और देवी देवताओं के जो पेंटिंग आजकल लोग बनाते हैं तो उसमें अलग अलग हीरे जवाहरात, मतलब आर्टिफिशियल, वो लगा के करते हैं, तो उसको मिक्स मीडिया बोलते हैं।
0: ठीक है,
1: तो मिक्स मीडिया पेंटिंग भी मैं कराती हूँ, है ना। तो ये अलग अलग चीजें अलग अलग समय पे और अलग अलग, जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको अलग तरीके का करवाया, थोड़े बड़े हैं तो उनको अलग करवाया। बहुत बड़ी उम्र के लोग मेरे पास आते हैं, 80-80 साल की महिलाएं आती हैं सीखने के लिए।
0: अच्छा जी, तो वो क्या सीखना पसंद करती हैं?
1: वो कैनवस पे पेंटिंग करना सीखना उनको बहुत अच्छा लगता है। कपड़े पे पेंटिंग करना, अभी मेरे पास दो हैं वैसी जो 80 साल के ऊपर की हैं, तो वो लोग दोनों कपड़े पे स्कार्फ बनाती हैं और अपने बच्चों को, बच्चे तो बच्चों को सबको गिफ्ट देती हैं। तो अपना बनाया हुआ किसी को देना तो वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, ऐसा बहुत सारा जो अलग तरीके का, अलग टाइप के लोग हैं उनके लिए हम स्पेशली उनको समझाते हैं कि आप ये करिए।
0: मॉडर्न आर्ट है,
1: मॉडर्न आर्ट है,
0: इस तरह का सही तरीके,
1: मॉडर्न आर्ट भी बहुत चलता है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट है जैसे मॉडर्न।

0: कलाकारों की, जैसे बहुत बड़े मास्टर्स हो गए ना, पुराने वैन गॉग है या वैसे, उनके मास्टर्स की पेंटिंग हम सिखाते हैं कि देखिए उनका कैसा था और उनके ऊपर से आप इसको आप अपना पेंटिंग बनाइए।
1: मित्र जी, हमारे देश में कहीं ना पूरे संसार में बड़े बड़े कलाकार हुए हैं, पेंटर हुए हैं, आप जिनसे सबसे ज्यादा प्रभावित थे?
0: मेरी माँ से उनका जैसा कोई नहीं है।

0: शौक में मैंने भी गार्डनिंग को अपना शौक बनाया लेकिन सबसे बड़ा तो आपको आश्चर्य ये होगा कि मेरे पास बहुत सारी बिल्लियां कुत्ते और खुले में रहने वाले बहुत सारे पंछी हैं।
1: अच्छा,
0: खुले में रहने वाले मतलब मेरे घर में बंद नहीं है।
1: हाँ हाँ,
0: लेकिन वो मेरे अपने हैं। कौवे हैं, पैरट्स हैं, तोते हैं, छोटी छोटी गिलहरियां हैं।
1: आपकी घर की वही रहती
0: रहती है और रोज खाने के लिए आती है। तो बिल्लियां और कुत्ते तो घर में रहते हैं और ये सब पूरा माहौल जो है पूरा जैसे एक जंगल जैसा माहौल है। और मेरे पिता ने भी पूछा था बापू ने, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भगे तो तेरे द्वार खड़ा भगवान में कोई छोटा अगर बच्चा भी आ गया बिल्ली का तो ये तो नहीं पता हमको कि ये भगवान है कि नहीं है। हो सकता है छोटा रूप लेके आए हैं, हो सकता है कि वो एक कौवा बैठा हुआ है वो भी एक भगवान का स्वरूप है तो वो आपके पास पानी या खाना मांगने आया है। तो कभी भी किसी को निकालो मत घर से, भूखा मत भेजो। तो ये है तेरे द्वार खड़ा भगवान, तो ये सब भगवान है हमारे लिए।
1: तो कितनी बिल्लियां पाली हैं आपने, कितनी कुत्ते पाल रखे हैं?
0: अभी तो 4 कुत्ते हैं और 40 बिल्लियां हैं।
1: क्या कह रही हैं?
0: हाँ जी,
1: 4 कुत्ते और 40 बिल्लियां। और कुत्ते बिल्ली साथ रहते हैं?
0: साथ रहते हैं।

0: कहा कि सब भगवान के आशीर्वाद है तो हो जाता है।
1: जी जी
0: बहुत बहुत मतलब एक अद्भुत बात आप कह रहे हैं और इतना आश्चर्य हो रहा है कि 40 बिल्लियां आपने पाल रखी, वो आपके परिवार की सदस्य हो गई।
1: वो परिवार है और सबके नाम है
0: जी, जैसे
1: जैसे जिंजर है, जैसे कालू है,
0: है ना,
1: जैसे ब्राउनी है, ब्लैकी है,
0: इनको पता ही
1: सिम्बा है, बहुत सारे हैं।

0: मुझसे भी करती है।
1: हाँ किया बहुत हो गया।
2: जी जी मैम, कभी ऐसा हुआ कि इन बिल्ली ने गुस्से में आकर आपकी ही पेंटिंग को हार दिया हो, खुरच दिया हो अपने नाखूनों से और आपको बहुत गुस्सा आया हो इन पर?
1: ऐसा हाँ करते हैं कभी कभी, लेकिन गुस्सा नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरे बच्चे हैं।
2: हाँ क्या बात है, बहुत सुंदर। तो यानी कि आपके घर में भरा पूरा जंगल है?
1: पूरा पूरा जंगल है। और बहुत मेहरबानी है कि कभी कभी मैं चेयर पे बैठ सकती हूँ।
2: तो मिथुन जी आप कहें तो ये गीत हम आपको सुनवा दें।

0: से सुनिए, आत्मसात कीजिए और देश को सबसे आगे रखिए। ऊंच नीच या कौन क्या है वो मत सोचिए और प्रेम से जिंदा रहिए एक दूसरे के साथ। जी, और मैं ये कहना चाहूँगी कि कला एक ऐसा माध्यम है जो मैंने देखा है बहुत करीब से, उसको अगर आप अपने जीवन में लाएंगे तो जीवन की कई मुश्किलें, कई स्ट्रेस बहुत कम हो जाएंगे। तो कला को अपनाइए, चाहे कोई भी कला हो उसको अपनाइए।
1: जी, बहुत खूब, बहुत शानदार। तो मित्र जी, आप सीधे मानी हुई और आपने आज उजाली उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपने पिता कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद किया, हमारे साथ उनकी जिंदगी को साझा किया, उनकी बातों को, उनके लेखन को साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य वक्त विविध भारती के लिए निकाला, आपके हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं।
0: मैं आभारी हूँ विविध भारती। मैंने जैसे पहले ही कहा कि हमारी रग रग में बसा है
1: जी,
0: और आपके साथ बात करके यहाँ सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई।
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से विविध भारती में आने के लिए। और दोस्तों, उजाली उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे थे गीतकार और कवि प्रदीप जी के सुपुत्री मिसेज प्रदीप से। और आज की बातचीत बस यही तो। अब

0: मित्र रिहोर क्या कहना चाहती है अपने श्रोताओं को अपने पिता के बारे में और अपने बारे में?
1: पिता के बारे में तो यही है कि बस उनके जो संदेश

आकाशवाणी जमशेदपुर से विविध भारती के बोल रहे हैं। 96.8 मेगाहर्ट्ज़

and the Hihitarikram, Chaya Ji. इतनी दिलकशी थी कहाँ जिंदगी में हमने जब तक आपको चाहा न था जी चाहता है कि साथ चले तो आहट भी ना आए अपनी दरमिया हम भी ना हो जो तुझे तन्हा चाहे सुनो ना खिड़कियाँ जाती आँखों की खुली रहे मेरे दिल में महताब उतरता है इसी जीने से अगर होता है इत्तेफाक तो यूँ क्यों नहीं होता अगर होता है इत्तेफाक तो यूँ क्यों नहीं होता कि तुम रास्ता भूलो और मुझे

अपने दिल को कैसे हमने साफ किया, दिन में तुम्हारे ख्वाब सजाए, शब भर तुमको याद किया। किताब जिंदगी का हर पन्ना महकता है, कुछ में आपकी आरजू है, कुछ में आपका ख्याली है। देखने के लिए तो सारा आलम भी कम है, चाहने के लिए एक चेहरा ही बहुत। किसी पाबंदे मोहब्बत की पूछना, वो ही बतलाएगा। इस दीवाने का जंजीर

को में नींद हो चांदनी रात हो, सर्द हवाएं हाथों में हाथ हो, महकों में दिन रात हो, तुम मेरे साथ हो। प्यार की दस्तक दिल पे सुनाई दे, चांद की सूरत ख्वाब में दिखाई दे, मेरी पलकों पे तितलियों के पर रखते कोई अपनी आहट की दस्तक सुनाई दे। कहां से तसव्वुर मेरा छुपके से तुझे छुआए, अपनी हर सांस से मुझको तेरी खुशबू आए। घंटियां बसने लगे हिस्से के सन्नाटे से, गुनगुनाता हुआ है तुम अगर तू आए। अक्सर मेरे ख्यालों में बाकी जहां बेख्याल कर जाते हो, आकर मेरे ख्यालों में बाकी जहां बेख्याल कर जाते हो, हमें भी सिखा दो हुनर कैसे ये कमाल कर जाते हो।

गीत का सफर बस नहीं तक। शिपाली कपूर को दीजिए इजाजत, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुनहरी धड़कन। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुनहरी धड़कन। तराने नए पुराने कार्यक्रम लेकर हम हाजिर होंगे बस थोड़ी ही देर में।

स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गाने के साथ। इसे हमने लिया है फिल्म हीरो से।

0: मार घुमा रहे हैं मगर गलत नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के भंडार में जब तक नहीं लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि
1: उनके हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पंडित रोनू मजूमदार संगीत सविता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत फिल्म संगीत और लोक संगीत के वास्तविक की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 मिनट भारती पर।
2: ये है विविध भारती और कार्यक्रम

kendilerini.

Zu sein. Willkommen, Menschen. Ich bin Monkey Bart.

Senato.

अच्छा हाथ को देखे हाल से देखा जाए। मन की बात के संवाद का

Hiroshima

तो जो मेन कार्यक्रम होने वाला है वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति कोलकाता शहर में जा रहा है। वहाँ पर खुद प्रधानमंत्री जी उसमें सहभागी होंगे और लाखों की तादाद में लोग कोलकाता में आएंगे।

0: constantly we are trying and watching and fighting with the management. अभी आजकल सिचुएशन ये है कि इवन इन ऑफिस फ्रेंड्स से भी अभी तक किसी भी उनको बुलाया जाता है यार हम तक ऑर्गेनाइज करके इसी गेस्ट में मैनेजमेंट के ऊपर फाइट करे और एक सशक्त प्रतिरोध हम मैनेजमेंट का बिजनेस पर कर सके तक
1: उन्होंने लोगों से स्वच्छता से रक्तदान कर जरूरतमंद की मदद करने की अपील की है।
2: ब्लड डोनेट करते हैं तो आपको नए ब्लड बनते हैं और तो उनको बनता है कि नहीं ब्लड सही को चाहिए ऐसा नहीं कि हम ब्लड डोनेट नहीं करेंगे

के रिचार्ज करने के लिए ये झंडा जिला साइकिल एसोसिएशन ने ये कदम उठाया। इसलिए अभी करीब 150 से बच्चियां पार्टिसिपेट की है, हम लोग सबको

क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। उसी सिख रेजिमेंट के बहादुर साहसी अफसर की स्वर्गाथा आपके लिए लेकर आए हैं, जिन्होंने स्वतंत्र भारत की ओर से अपना पहला युद्ध लड़ा था। फौजी साथियों, हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय के बारे में, जो स्वतंत्र भारत में शहीद होने वाले कमांडिंग ऑफिसर थे, जिन्होंने सन 1947 के युद्ध के दौरान अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था और भारतीय सेना के इतिहास में शौर्य गाथा लिख गए। हर पल हम सच्चे भारतीय बनकर देश के प्रति अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर

दीवानगंज से किराए का जन्म 6 फरवरी सन 1913 को गुजरावाला में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनकी शुरुआती दौर की शिक्षा बिशप कॉटन स्कूल शिमला में हुई थी। आपके पिता का नाम कर्नल गणपत राय और आपके परिवार ने भारतीय सेना के प्रति अपनी सेवाएं देने और देश के प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की उत्कंठा खूब बलवती रही। उन्होंने भी अपना मन इस ओर लगा लिया था, इसीलिए उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रवेश लेने के लिए प्रयास किया और IMA के पहले पाठ्यक्रम में शामिल हो गए। लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय एक प्रशिक्षक के रूप में स्टाफ कॉलेज में तैनात होने वाले पहले भारतीय

की एक बेहतरीन अधिकारी के रूप में आपकी उत्कृष्ट पहचान बन चुकी थी। वे सिख रेजिमेंट के प्रथम बटालियन की गुड़गांव में कमान संभाले हुए थे। इसीलिए जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, आपको कश्मीर के इस मिशन के लिए चुन लिया गया और उन्हें वहां भेजा गया। 27 अक्टूबर 1947 को लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान मंजीत राय को श्रीनगर के ऑफिस में एयरफील्ड की सुरक्षा के तहत दिल्ली से इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस युद्ध क्षेत्र में भेजा गया था। साथियों, लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय के नेतृत्व में एक सिख रेजिमेंट से कुछ सैनिकों को यहां लाया गया था। इस तरह बड़ी कुशलता और सूझबूझ के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय अपनी छोटी पलटन के साथ तुरंत बारामूला की ओर बढ़े, जिससे उस जगह पर अपनी पकड़ बनाई जा सके। कैप्टन कंवरजीत सिंह के अगुवाई में कंपनी बारामूला और डी कंपनी मेजर अर्पण सिंह के

Sagati. दुश्मन सेना भी उधर इसी इरादे से घात लगाए थी कि किस पल आक्रमण किया जाए। समय बहुत कम था, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय ने अपनी जान की परवाह न करते हुए बड़ी बहादुरी, अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय देते हुए दुश्मनों का सामना करने लगे। दोनों ओर से गोलाबारी शुरू हो गई थी। दुश्मन भारी मशीन गनों और

जवाब दे रहे थे। धरती, आकाश और युद्ध भूमि का वो इलाका जहाँ ये गोलाबारी हो रही थी, गोलियों के शोर से गूंज रही थी और हुंकारे थी, हमारे जाबाज रण

से दुश्मनों के हौसले पस्त हो चुके थे। उनको ये ज्ञात हो चुका था कि लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय और उनके सैनिकों को हटा नहीं पाएंगे। तब दुश्मनों ने खुद ही पीछे हटने में अपनी भलाई समझी और ये निर्णय लिया कि अब उन लोगों के आगे कोई बच नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी वे बराबर गोलियों की बौछार करते जा रहे थे। लेकिन तब तक लेफ्टिनेंट कर्नल रंजीत राय को दुश्मनों की गोली लग चुकी थी। अपनी टीम की अगुवाई करते हुए 27 अक्टूबर 1947 को वे युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हो गए। फौजी साथियों, हालांकि नवंबर 1947 को बारामूला से भारतीय सेना को हमलावरों को वहां से बेदखल करवाने में 2 सप्ताह का समय लग गया था, लेकिन विजय हासिल हुई। इस विजय में भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट ने अपना एक वीर योद्धा हमेशा के लिए खो दिया था, लेकिन उनकी शहादत व्यर्थ नहीं गई। वो एक शौर्य गाथा लिख गए। आज हम सभी के लिए प्रेरणा की वो मिसाल बन गए कि यदि जिगर में हिम्मत और हौसला, अपने देश के प्रति, अपनी मातृभूमि भारत माता के प्रति यदि है, तो हम अपना सब कुछ लुटा सकते हैं। देश की सुरक्षा सबसे पहले है, क्योंकि यदि देश सुरक्षित रहेगा तो हम सभी सुरक्षित रह सकेंगे। वो कहते हैं ना कि मरने के बाद भी इनके नाम में जान है, ऐसे जाबाज सैनिक हमारे भारत की शान है। देश के उन वीर जवानों को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और सलाम करते हैं। भारत सरकार द्वारा देश का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र 1947 को लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय को मरणोपरांत उनके उत्कृष्ट निर्णय लेने की और लड़ने की भावना और सर्वोच्च बलिदान के लिए प्रदान किया गया। उन्हें श्रीनगर को बचाने और अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सदा

जमाला के अंतर्गत आपने सुनी महावीर चित्र प्राप्त लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय की शौर्य गाथा। शोध आलेख स्वर मुंशी वर्मा का, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता तेज सिंह कामले। तो अब मुंशी वर्मा को दीजिए इजाजत,

और सुमन कल्याणपुर के गाय दिल एक मंदिर फिल्म के इस गाने के साथ ही इंद्रधनुष में साज और आवाज कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: लाइफ के लिखी नाटिका कागज के जेवर
1: आपका आशीर्वाद
2: है। अरे हाँ, तुझे बताए

0: पार्टी है, लड़की के चक्कर में बुढ़ा की आंखों को रोशनी
1: भाई मंगरू, लड़का हो या लड़की हो, है तो माँ बाप की खुशी का कारण बनता है ना।
0: इसी कारण तो

0: हो सकता है पटवारी जी?
1: अरे पूरा गाँव दावत में शामिल हो और आप वहाँ नहीं है।
0: तो क्या तुमने पूरे गांव को दावत दी है?
1: अरे पटवारी जी, मेरा बस चलता ना तो आस पड़ोस के दो चार गांव वालों को भी दावत में बुलाता। कितनी मन्नतों के बाद भगवान ने मुझे औलाद दी है।
0: हाँ मंगलू, समझ सकता हूँ भाई, समझ सकता हूँ। तुम्हारे लिए ये खुशी वो भी बहुत बड़ी है कि मेरी शादी के 12 साल बाद तुम्हारे यहाँ पहली संतान हुई है।
1: लेकिन लेकिन क्या पटवारी जी,
0: मैं अभी कुछ ही महीने पहले भी तो करीब करीब पूरे ही गांव को तुमने दावत दी।
1: अरे जी, यही एक बात तो पुरखों से सीखी है, खुशी में या गमी में खर्चे को क्या करना।
0: हाँ ठीक कहते हो मामू, ठीक बात कहते हो भाई। इसी दावत के बहाने दूर पास के थोड़ी देर के लिए मिल जाते हैं। अच्छा वो रूप सिंह को भी दावत दी है ना?
1: रूप सिंह?
0: हाँ रूप सिंह।
1: अरे किसका बात है, नाम ले लिया आपने पता दी। अरे उस चोर से को तो अब कोर्ट की जेल की दावत देगी।
0: तो अभी तक मुकदमा चल ही रहा
1: है। हाँ बस अब फैसले की तारीख पड़ने वाली है, समझो।
0: मेरा ख्याल है मंगरू कि इस मुकदमेबाजी में तुम अपनी 3-4 एकड़ जमीन तो
1: क्या हुआ पटवारी जी, बाकी दो एकड़ की बिजा दूंगा। अरे मैं खुद भी बिक जाऊंगा, लेकिन बच्ची को ना पकड़ने से पाजूंगा।
0: अरे तुम लोग सुलह क्यों नहीं कर लेते?
1: सुलह? अरे सुलह का टेम गया पटवारी जी, अब तो बात इज्जत की है इज्जत।
0: देखो मंगरू, छोटी सी बात को इज्जत का सवाल बना लेना जायज है।
1: अरे सब जायज है पटवारी जी, प्यार और लड़ाई में सबसे सब कुछ जायज है। पता तमाशा भर देखते जाओ।
0: हाँ वो तो मैं देख ही रहा हूँ।

ਆਰੋ ਗਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਆਰੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਹਾਂ ਦੇਖੋ

0: सबसे पहले तो मैं चौधरी का खर्च चुकाऊंगा, उसके मुंह पर गेम आऊंगा, अरे जमीन छुड़ाऊंगा और लेकिन अब बुजुर्ग का जरूरत कर अरे दीदी चौपा पटवारी जी अरे अब तो हर बरस मैं बिना भूले राज के बचत पत्र नहीं दूंगा। हाँ जब मेरी बिटिया तैयारी हो जाएगी तो उसकी शादी में उसके कागज के दिए
1: रखूंगा से उसका जीवन उसका भविष्य समय तुम्हें तुम्हारे याद में भगवान सफलता
0: बहुत बहुत

आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं केके के गाए जाने से। इसे लिखा है सईद काजी ने, संगीत प्रीतम का, फिल्म का नाम है तुम मिले।

0: में श्री राम और शिल्पा राव की आवाजों में ये जवानी है दीवानी फिल्म का गाना सुना। इसे लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत प्रीतम का था।
1: इनकी बातें की मधुरता से मन का हर कोना जीवित हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंभीर के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, मगर बर्फ जमी रहती है। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंभीर में जब तक न लगाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि नहीं उसमें मेहनत की।
1: उनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पंडित रोनू मजुमदार, संगीत सिन्हा,

इस एक बात को हमें लेके आगे बढ़ना होगा।

0: कौन जाएगा? मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के

0: padre era una mujer bastante linda. वो जो भोजन है उस भोजन को दरवाजे के मुकाबले जब तक न लगाया जाए वो आप कह सकते हैं कि नहीं
1: है। श्रोताओं को अदौकिक

सुनते हैं लता मंगेशकर और मनहर उदास की आवाज में अभिमान फिल्म का गाना। गीत मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा है, संगीत से सवारा है एस जी बर्मन ने।

सुनकर याद आ जाता है वो जमाना जब फिल्में तो ब्लैक एंड व्हाइट होती थी मगर उनकी कहानियां जीवन के जज्बाती रंगों से भरपूर। और याद आता है वो कलाकार जो अपने सुदर्शन व्यक्तित्व और सीधे सरल परंतु प्रभावी अभिनय से दर्शकों के दिलों पर

26 जून महीने की 14 तारीख को मेरठ में जन्म हुआ भारत भूषण का। पिता राय बहादुर मोतीलाल सरकारी वकील थे। भारत भूषण बस 2 ही वर्ष के थे जब उनकी माता का देहावसान हुआ। माँ के गुजरने के बाद बड़े भाई आर चंद्रा के साथ भारत भूषण अपने दादाजी के यहाँ अलीगढ़ चले आए।

सोचा पिता की मर्जी के खिलाफ एक्टिंग में करियर बनाने के लिए पहले कोलकाता और बाद में मुंबई आकर बस गए। केदार शर्मा निर्देशित 1941 की फिल्म चित्रलेखा में भारत भूषण को अभिनय का पहला अवसर मिला। भारत भूषण को अभिनय का पहला अवसर तो मिला मगर उसके बाद संघर्ष का एक लंबा दौर

दूषण को प्रेम मिले, बैजू बावरा इस फिल्म ने उन्हें आनंद फानंद सुप्रसिद्ध फिल्म सितारों की श्रेणी में लाकर रख दिया। इस फिल्म के संगीतकार नौशाद, नायिका मीना कुमारी और पार्श्व गायक मोहम्मद रफी को जितनी तारीफें मिली, उतनी ही तारीफ और शहरत भारत भूषण को भी नसीब हुई। मानो प्रतिभा की गंगा और किस्मत की जमुना का

सिलसिला चल पड़ा। एक के बाद एक फिल्में आती गई। भारत भूषण अपने अभिनय से किरदार सजाते गए और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए। 1952 से 1954 तक रिलीज हुई ये फिल्में हैं आनंद मठ, माँ, मिर्जा खालिद, शबाब और श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु इस फिल्म के लिए भारत भूषण को सर्वोत्कृष्ट अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार प्रदान किया गया। उनके समकालीन अभिनेता और निर्माता चंद्रशेखर कहा करते थे, हिंदी फिल्मों में यदि पौराणिक या ऐतिहासिक पात्र

विषयों की किताबें वो पढ़ते रहते थे और शायद यही वजह थी कि वो बहुत अच्छे लेखक भी थे। बरसात की रात, नई उम्र की नई फसल, बसंत बहार और दूर का चांद आदि फिल्मों की कहानियां उन्हीं की लिखी हुई थी।

바라본 참바라 견디고 소원이 좋아 사원 안고리만 바사티라 무르무르케 나데 고우갓 संगीत सम्राट कांते 11,000 लड़कियां जहां आया तकदीर 1950 और 1960 के दशक की इन फिल्मों में नायक की भूमिका निभाने वाले भारत भूषण उन गिने चुने अभिनेताओं में से थे जिन्हें संगीत की बहुत अच्छी समझ थी और इसीलिए अधिकतर संगीत प्रधान फिल्मों के नायक के रूप में उनका चुनाव किया जाता। दूध का चांद इस फिल्म के वो निर्माता भी थे। उस जमाने के मशहूर गायक कलाकार मोहम्मद रफी, मन्ना डे, मुकेश और तलत महमूद के गायक ज्यादा

के रूप में भारत भूषण पूरे उत्साह और उमंग के साथ सक्रिय थे। 1970, 1980 और 90 के दशक की ये फिल्में थी जय संतोष मां, मीरा, उमराव जान, हीरो, रहगुजर, काला धंधा, गोरे लोग और

कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति सहायक आकाश सत्य है, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत जयंत पाठ्रीकर को।

0: घुमा रहे हैं भाई, मगर बड़ा सुंदर वो जो घुटन है, उस घुटन को दरवाजे के गंभीर में जब तक नहीं लगाया जाए वो आप कह सकते हैं कि
1: इनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को शुरू के अलौकिक संसार में ले जाती है।